के बुढ़ापा सब बिकता है घर हो पाता। लूट चुके हो दुनिया सारी इस पर भी तक